0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर इस ऐप पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आत्मा का वास्तविक आलोक बाहरी वैभव में नहीं अपितु अंतःकरण की निर्मलता में प्रकाशित होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान में आप सुन रहे हैं किष्किंधा कांड भाग 272 आज प्रसारित होगा। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, इसका भाग 6 प्रसारित होगा। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। भूले बिसरे गीत सुबह 7:00 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की, और ये कार्यक्रम आप पुनः दिन में 2:00 सुनेंगे। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की है और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में सुनिएगा लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग पहला, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, सुबह 10:00। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुरीला सफर। दो 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत सुनिएगा लुप्त होती पारंपरिक कलाएं, कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलाक्कयील देवकी अम्मा पर्यावरण विद की कहानी, और मुझे कुछ कहना है वो चिट्ठियों का जमाना, उपयोगी टिप्स बारिश में घर की सफाई। संवादक हैं मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4:00 हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 5:00 छाया गीत तराने नए पुराने, 5:30 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान। 8:00 हवा महल में सुनिएगा प्रहसन खुसुर फुसुर, लेखन सोमनाथ नागर का है, निर्देशन कमल दत्त का। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00। दस बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर और रात्रि 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बाल्य पुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत कल आप बता रही थी कि राग बिहाग में तीज का जो पद,
1: जी हाँ, ख्याल की बंदिश के रूप में तो इसे सिखाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बंदिश की ठुमरी कह के भी गाते हैं। तो आप देखिए, एक ही पद को ख्याल गायक भी गाते हैं, बंदिश की ठुमरी भी कह के गाया जाता है, और भक्ति पद भी है, यानी एक तरह से इसे भजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिरों में राग सेवा के दौरान गाया जाता है।
0: जी, वर्षा काल में जितनी तीज के साथ हम ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार,
1: जी बिल्कुल,
0: तो और भी त्योहार आते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ना,
1: जरूर जरूर करेंगे।
0: लेकिन आज आप
1: क्या क्या नहीं किया देखिए श्रृंखला, हमने शादी करा दी, लग्न लगवा दिया, फिर तीज मना ली, तो सब कुछ करेंगे धीमे धीमे।
0: तो आज आपने क्या सोचा है?
1: मैं सोच रही थी कि तीज त्योहार की बात चल रही है, तो आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं अलग अलग जगहों पे तीज का भी मनाना थोड़ा सा फर्क इधर उधर होता हो, लेकिन मूल रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक और पद मुझे मिला, वल्लभ संप्रदाय में भी गाया जाता है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी, कुछ गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में के मंदिरों में भी ये गाया जाता है, और ये एक संग्रह में मुझे मिला जिसमें कि मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में इसे दिया गया है। और सिंधारा वो होता है, वो जो उत्सव मनाने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, शगुन के रूप में जो साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान इत्यादि दिया जाता है वो एक सिंधारा होता है, और सब लोग मिलके झूले पे बैठ के पकवान खा के एक मौज मस्ती का त्योहार ये है। वो मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में मुझे ये मिला, और इसे मैंने तिलंग राग में निबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। ये ख्याल के रूप में नहीं है, ना कि ठुमरी के रूप में है। मेरी चेष्टा ये रही है कि जो साहित्य है उसमें जो एक मस्ती है, एक अल्हड़पन है और एक निवेदन है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आपको बोल सुनाऊं थोड़े से?
0: बोल भी सुनाइए और तिलंग का रूप भी थोड़ा समझाइए।
1: जरूर जरूर। तो ये खमाज जो थाट है उसका एक राग है ये, और इसमें ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय संगीत के अन्य गीत प्रकार इसमें काफी मिलते हैं
0: जी।
1: तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है।

0: सा ये तिलंग का स्वरूप माना जाता है और इसी में मैंने ये पद इसको ढालने की कोशिश की
1: तो है। पद भी बताइए बोल।
0: पद कुछ इस प्रकार है, मैया अब हिंडोर गढ़ावो।
1: वाह, सावन के झूले पड़े।
0: हाँ, तो माता से अनुरोध है कि अब आप झूला डलवाइए, हिंडोरा गढ़वाइए। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि बस ऐसे ही कहीं एक टायर लगा के जैसे बंद जाता है, वैसा नहीं। सोनी सुघर बुलाए नगर के, हाँ? यानी जो शहर का प्रतिष्ठित सुनार है, हाँ? उसको बुलाइए आप,
1: हाँ, नगर
0: सोनी,
1: का,
0: हाँ, हाँ, सोनी सुघर बुलाए नगर के रतन अमोल जड़ावो। तो रत्न जटित हिंडोला,
1: उस हिंडोले में, हाँ, हाँ, हाँ,
0: हाँ। और उसके लिए बाकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि झूले हाँ? पे यूं ही हम ऐसे फटे हाल तो नहीं बैठ जाएंगे। तो गहरे रंग चुनरी सारी छीपन पे जो रंगावो, विशेष रूप से उसे छपवाया जाए, रंगवाया जाए, ऐसी साड़ी आप गहरे रंग की तैयार करवाइए। और केवल मेरे लिए नहीं, कन्या गोप जिती मो साथिन,
1: वाह वाह,
0: सादर सब पहिरावो।
1: क्या बात है, हाँ।
0: तो सब जो कन्याएं हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं, सब उनके लिए गहरे रंग की विशेष छपाई के साथ वो साड़ी आप तैयार करवाइए। ये सावन मन भावन रानी मोको उबटी नहावो। तो उबटन लगा के जो स्नान होता है वो बहुत जरूरी है। उबटी नहावो, सब सखियन में सुंदर लागो रच सिंगार बनावो।
1: वाह, सब सखियों को छपाई की हुई सुंदर साड़ी गहरे रंग की तो चाहिए, लेकिन सब सखियों में इसको सुंदर भी दिखना है सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा तो तब ब्यूटी पैजेंट नहीं होता था, पर ऐसा ऐसा इच्छा रहती थी कि सबसे सुंदर हम नजर आए। और फिर क्या पकवान क्या होंगे उसका भी संकेत इसमें मिलता है। पुआ करी, जो पुआ होता है
1: मालपुआ,
0: जी, पुआ करी कीरति मैया गुझा मेवान भराओ, मेवा से, जी, मेवा से भरी गुजिया वो बनेगी। अधिक राचनी, जो ज्यादा रचे, अधिक राचनी मेहंदी सो ले तुम मो करण लगाओ। वैसी वाली नहीं जो कि ऐसी हल्की धुंधली सी आ जाए,
1: हाँ।
0: पर जो अधिक रचे गहरी, वैसी गहरी मेहंदी, हाँ। वो चाहिए मुझे। और फिर झूले का वर्णन है, मानिक चौक पौरी के आगे तहां ले खंभ रुपावो, और जो उसके खंभे बने हैं उस पे मरुवे और मयार जु डांडी चित्र विचित्र करावो। तो क्या भव्य एक दृश्य बनता है।
1: जी, मयूर मरावे
0: मरुआ,
1: मरुआ, मरुआ,
0: हाँ, और उस फूल लगा के, हाँ, उसे, हाँ, सजाया गया है। और ये जो तीज त्योहार अति बड़ो सब मन मोद बढ़ावो, ये तो इसीलिए होते हैं तीज त्योहार की सब अपना मौज मस्ती करें। उमड़े श्याम सजल घन गर्जन गहरी सुनी सच पावो, उसका सच्चा आनंद जो है तभी होता है जबकि बादल भी उमड़ रहे हैं और बादल की ध्वनि और नगाड़े जो बजते हैं बादल के
1: वर्षा
0: वो भी सुनाई दे। ये वृंदावन दास जी का लिखा हुआ पद है और ऐसे बहुत संत कवि रहे जिन्होंने कितना साहित्य लिखा है उनमें से ये।
1: तो अब देर न करियो
0: चलो सखी
1: जी।

0: राग तिलंग में शुभाजी ने हमें सुनाया है तीज त्योहार का पद। शुभाजी कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

नीचे श्रोताओं हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस पहले गीत के साथ। बैजू पावरा फिल्म का गीत है। मोहम्मद रफी की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

0: तो बहुत ज्यादा भावुक है, लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए। तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
4: चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते
3: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
5: ओके टिको केटिको बर्फ बदन है।
3: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
6: मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
3: जी,
6: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
3: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके
3: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
7: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूली बिस्तरी गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा गीत शंकर जय किशन की बनाई धुन पर, फिल्म का नाम दाग।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर इस ऐप पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पुणे केंद्र से मराठी प्रादेशिक समाचार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: नास्तिक फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सी रामचंद्र का संगीत है, गायक कलाकार और गीतकार प्रदीप हैं।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: देखो टर्मरे

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का पहला गीत अभिलाषा फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए सुनिए सुनिए
6: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
7: कहिए ना,
6: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
8: हम हेरा ही प्यार की कार्यक्रम सुन रहे हैं आप विविध भारती से। सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में अंजाम फिल्म का गीत, अख्तर रोमानी की रचना, गणेश का संगीत।

0: छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: हसरत जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और अब वक्त है कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में एक छोटी सी ब्रेक का।
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।
2: बताओ मेरे दोस्तों कैसे हो सब, कान खोल के सुन लो मेरा संदेशा अब।

मिलने, उसके दिल की वेदना को समझने, उसी का संदेशा तुम तक लाया हूँ। अब नहीं सुधरेंगे तो डूबेंगे सब, तो सुनो सुनो सुनो, पानी बचाओ रे।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक श्रीमान एक श्रीमती इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें।

0: शोख अदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे, इश्क में पड़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओके टिको केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: हमें राही प्यार की इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम साया फिल्म से। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी की रचना है, ओपी नैयर का संगीत।
5: आज की रात कभी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर

0: वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: India is proud to be one of Africa's।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड

0: और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च

0: प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है

है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती, कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है।

मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है। दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए, क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: शोख अदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे, इश्क में पड़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए।
5: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार पुणे केंद्र से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की है। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होत, एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जात, मद्यपान करून गाडी नको रे धरू, आई बाबांची स्वप्न नको भंग करू, झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा, आपलेच लोक वाट पाहती घरा।
4: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुछ ना कहो, इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर हैं, जावेद अख्तर की बोल, शंकर एहसान लोई की बनाई धुन।

श्रोताओं, आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। मनाया क्या जाता है, इसे हम याद करते हैं जो 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की त्रासदी को याद करवाता है। हिरोशिमा जापान का शहर है। ये घटना हुई थी, अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम इस शहर पर गिराया था इस दिन। इसका परिणाम ये हुआ था कि लाखों की जानें गई थी, कई सैनिक मारे गए थे। जो बचे वे हिबा कुशा कहलाएं, विकिरण से जीवन भर संघर्ष करते रहे। दुनिया में पहली बार परमाणु युग की शुरुआत हुई। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और भविष्य की विश्व राजनीति की दिशा तय कर दी। अभी यह दिवस खास महत्व रखता है क्योंकि दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती धमकी और भू राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है। यह दिन हमें न केवल अतीत की और उस भयावह घटना की याद दिलाता है, बल्कि शांति, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने का नैतिक और वैश्विक आह्वान भी करता है। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य है परमाणु हथियारों के खिलाफ चेतावनी। यह दिन बताता है कि परमाणु शक्ति से सुरक्षा नहीं बल्कि विनाश होता है। शांति और अहिंसा का संदेश, यह गांधी जी के सिद्धांतों को दोहराया जाने का समय है। अहिंसा ही सबसे बड़ा अस्त्र है और पीड़ितों को श्रद्धांजलि। और कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत इश्क जादे फिल्म से। यह है फिल्म का नाम। शालमली खोलगड़ी ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनि का लिखा, अमित त्रिवेदी की बनाई धुन।

0: अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
4: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आए हाय
7: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। और कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल के बोल, एमएम करीम का संगीत।

0: हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा। सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: हिंदी सिनेमा की

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको, अरिजीत सिंह की आवाज में, जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूँ विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
1: ऐसी अनमोल यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: बच्चा है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था। ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकारा।

दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

0: We bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो, एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और

0: फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियाँ भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था, जो बेगरी करते हैं काफी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट इंटेलेक्ट के वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनके फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फ्रॉम द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रासरूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और इसमें एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन।

0: ऑफ ओल्ड एज होम्स, मंत्रालय के अंदर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी या जितने वहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स वर्कशॉप्स करते हैं और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जेनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज वॉट आई वॉज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेज लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडिया फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, we have to work collectively towards a society which is an age friendly India and age friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You have been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, founder, secretary and chairperson Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने

0: चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहाँ से लगा था?
1: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
0: बिल्कुल।
1: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
0: बिल्कुल,
1: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
0: बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
1: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
0: बाहर से लेने
1: जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
0: बाल भारती,
1: राजा भैया, कई किताबें, ढेर। और पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे। जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहाँ एक आज़ादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहाँ मायापुरी भी थी, वहाँ माधुरी भी थी, वहाँ फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहाँ से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
0: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
1: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सोच छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
0: कोर्स की किताब के अंदर,
1: कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
0: जरूरी तौर पे
1: हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
0: पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियाँ पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
0: बिल्कुल,
1: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
0: बिल्कुल,
1: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी। तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
0: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोक कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
1: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
0: बिल्कुल,
1: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
0: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन
1: था एक बहुत अच्छा
0: राधुका प्रकाशन,
1: और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू। हाँ, ना जानू की कहानियां, और एक मैगजीन आता

0: थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया। वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये। तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरे
1: सबने पढ़ी। बिल्कुल। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहाँ जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी कब क्यों और कहाँ। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट

0: मैं अब पाकिस्तान में,
1: अब पाकिस्तान
0: हाँ, में हुआ था तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स
1: बिल्कुल।
0: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है उनके जैसा ही दिखता था वो।
1: नहीं,
0: मुझे मुझे ऐसा लगता था,
1: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
0: हाँ, जैसा वो, हाँ, जैसी जिसकी नजर,
1: हाँ।
0: तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
1: ओके।
0: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
1: तो उस दौर ये कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
0: अब बहुत सारे असल में, तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
1: पहले ही बॉक्स में नाम आता था,
0: हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रिक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज़ ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती। शेहाब साहब छोटू लम्बू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफ़ी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूँ, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए।
1: अच्छा।
0: वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा
0: भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा, टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, तो
1: कुछ भी कर सकते हैं
0: और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है, पहला जो मैंने

0: एक लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ ने, और
1: अच्छा।
0: सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था। लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राॅइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे, और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊँगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए पहले ही दिन, पहले ही कार्टून्स गए और 15 दिन में छप के आ गया, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक। लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था।
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस।
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था।
1: हाँ।
0: तो दो सेट में
1: और वो बड़ा महंगा लगता था।
0: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था महीने। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा। हाँ। मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए,
1: अपनी बड़ी होनी चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई
0: वो? हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा। और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी,
0: अलग कहानियां हैं वो। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी। लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: हाँ,
0: तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा रकम,
0: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक।
1: हाँ।
0: और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा?
1: मामला
0: पढ़ाई कौन करेगा?
1: अच्छा, फिर
0: मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप।
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया,
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ नहीं
1: आगे की कहानी सुनिए। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे।
0: चलिए।

0: नवी में आप फेल हो गए?
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हाँ, हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा,
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ भी नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: वो छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है। हम ही हमें
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए। अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे, उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। हाँ, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो।
0: हाँ,
1: तो स्टिग्मा तो

0: गया था और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो।
1: हाँ।
0: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिरे हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते,
1: नजरें कैसे मिलाएंगे?
0: हाँ। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ।
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल। देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं
1: बिल्कुल
0: वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है।
1: घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है, तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
1: अच्छा। हाँ, ये सब चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पर लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि
1: फेलियर
0: बच्चा फेल होता है
1: उस बच्चे
0: तो वो अपने अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है।
1: Correct.
0: उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। वैक्यूम में वैपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी,

0: वो सब कुछ वहाँ मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं,
1: गुजरे
0: एक एक
1: हैं।
0: दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई है लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह
1: एक्सप्रेस
0: पाके
1: होते
0: निकल
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
0: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहाँ उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद, नाइन्थ
1: अच्छा,
0: सेकंड ईयर।
1: ये एक तरह की
0: ये एक
1: राहत
0: तरीके
1: थी।
0: की हाँ राहत थी।
1: हाँ
0: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
1: अच्छा,
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल,
0: घबराहट नहीं थी।
1: हाँ
0: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में, क्योंकि
1: हाँ
0: ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकेंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब छुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा,
0: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
1: सर्कुलेट
0: रही
1: होती
0: थी
1: रहीं,
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ, तो
1: है।
0: ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का।
1: एक
0: तो वो एक
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल, ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया,
0: सुपर कमांडो ध्रुव
1: प्रतिशोध
0: की
1: की
0: पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की
1: ज्वाला।
0: ज्वाला थी वो, और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: हाँ,
0: तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी।
0: धीरे धीरे धीरे धीरे करके,
1: और मेरी पीढ़ी, मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने आया, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देख के आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से।
0: अरे,
1: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं।

0: मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहाँ मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेके कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज़ हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज़ करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो
1: बिल्कुल
0: सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहाँ जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूँगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊँगा। तब तक मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहाँ खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्राइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके,
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं मेरे
1: रे।
0: पास रखा है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके ईजी तरीके भी हैं, मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं था।
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में, मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, और जो कोर्सेज थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहाँ आप आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत ज़रूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहाँ था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहाँ मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज़ है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह।
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहाँ से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस स्टूडियो
1: मौजूद
0: में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पे हम लोग ड्राइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने

0: की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मार्वल के साथ गॉथम कॉमिक्स था, गॉथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल
0: जाता है, अब वो काम बन जाता है।
1: yes.
0: कि आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: लिफ्ट करा दे
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि

0: शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप।

0: काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

रफकत अली खां और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अमीर खुसरो की ये रचना। आइए अब सुनते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत। एल्बम का नाम है कभी तो नजर मिलाओ।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।

चंदन दास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था बशीर बद्र का। लीजिए पेश है ये कव्वाली। यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजें हैं।

पीस सके, उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके, और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती।

की हिम्मत है, पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगरचे फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साफ बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

साबरी ब्रदर्स और साथियों की आवाजों में ये थी कव्वाली। आइए अब सुने रानू मुखर्जी के स्वर में ये गीत। रचना है कृष्ण राव।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए

0: श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसुला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए में भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। लता मंगेशकर के स्वर में ये है पद्मा सचदेव का लिखा गीत। संगीत जयदेव का है फिल्म प्रेम पर्वत।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मशाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल थे, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था। इजाजत फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। उमरा जान फिल्म की गजल सुनिए तलत अजीज की आवाज में, शहर यार के बोल, खयाम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नाम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मनहर उदास मोहम्मद अजीज की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये शराबी फिल्म का गाना है।

शराबी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

परख फिल्म का गाना था। गीतकार संगीतकार शैलेंद्र और सलील चौधरी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक श्रोता नहीं बल्कि अनेक श्रोता लिख रहे हैं, अब के बरस भेज मतलब बंदिनी फिल्म का गाना। तो इतने सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है तो हमें लगता है वही गाना अब बजाया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियाँ भी पढ़कर सुना दी जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दिल को छूने वाली है, पर पढ़ के मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने बचपन की यादें बताऊं, बेटी की यादें साझा करूं। खैर, हमारा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा। माँ को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी खेती बाड़ी के काम से, पर जब भी कभी नागपंचमी या राखी आती तो बाबा फ़ोन करके पूछते रहते थे। आज भी पूछते हैं, बाई तू कदी येत, मतलब तुम कब आ रही हो। और बहुत सारे श्रोता विदाई पर कुछ बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विदाई सिर्फ बेटी की विदाई नहीं होती है, या जो

लड़कियां हैं, औरतें हैं, सिर्फ आपकी विदाई नहीं होती बल्कि आप अपने बेटे को भी विदा करते हैं, आप अपनी बेटी को विदा करते हैं जब वो पढ़ने के लिए घर छोड़ते हैं। तो वो बातें भी साझा कीजिए। आप खुद हॉस्टल में रहे होंगे, वो यादें भी साझा कीजिए। और इसमें हम मिली जुली टिप्पणियाँ शामिल करते हैं, मिले जुले विषय को रखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय बरखा की कुछ बूंदें उन आँखों से भी छलक जाएंगी जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई के समय को याद करते हुए उसकी यादों की गुड़िया के खिलौने को बड़े प्यार से निहार रही होगी। और एक श्रोता ने लिखा है, अब के बरस तुझे धरती की रानी, मतलब बरस शब्द से इन्होंने ये गाना चुना है। तो शब्दों को पढ़ते रहिए और गाने चुनते रहिए। अब अगला गाना सुनते हैं बंदिनी फिल्म का। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। अब इसके बाद बंदिनी फिल्म के गाने के बाद कौन सा वाला गाना आना चाहिए वो भी जरा आप चुनिए, बताइए हीरोइन कौन है इसमें। इस फिल्म में हीरोइन का नाम पूछना है आपको। फिल्म है बंदिनी।

बंदिनी फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन होती है फिल्म में नूतन। सभी श्रोताओं ने ये भी जवाब सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गज़ब, आपने तो शुरुआत के फिल्म परख के गाने से वो सजना बरखा बाहर आई। बिल्कुल, ये तो सोचा ही नहीं था, लेकिन क्यों नहीं सोचा था, इसमें फुहार शब्द कहीं आता है ना, और इबारत में है, इबारत में जो कुछ लिखा है उसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको गाना ज़रूर याद आएगा। हालांकि अब एक गाना हम ऐसा सुनवाने वाले हैं जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, और उस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात होगी, कोई ख़ास याद होगी, तो ज़रूर साझा कीजिएगा। ज़रा इंतज़ार कीजिए, हम पहले टिप्पणी आपकी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हमने पहली जॉब जहाँ थी उसी नगर से दूसरी जगह जाना हुआ, तब हमारे मकान मालिक और उनकी

पत्नी ने हमें अपने बच्चों को विदाई देते हुए ऐसे रोते हुए ढेरों प्यार बरसाते विदाई दी थी। क्या बात है भाई, जब दरअसल अभी भी छोटे शहरों में जब बच्चे घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, या फिर जब बेटी अपने मायके आती है तो अड़ोसी पड़ोसी छतों से झांकते हैं और जो जिनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है वो मिलने भी तुरंत आ जाते हैं कि बेटी अपने ससुराल से मायके आई है। ऐसे ही कुछ समा होता है अड़ोस पड़ोस के साथ। हालांकि महानगरों में ये चीज़ें कम होती हैं क्योंकि महानगरीय व्यस्तता आड़े आ जाती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सावन का महीना बड़ा अच्छा माना जाता है, खास तौर से बहन बेटियों की यादें ताज़ा कर देता है। ये महीना एक तरह से प्रेम उमंग का महीना होता है। हमें वो दिन याद आते रहते हैं जब बहनें इस महीने में झूला डालकर झूला झूलती थीं, हम भी उनके साथ झूले पर झूलते थे। उधर रक्षाबंधन की भी याद दिला देता है और सावन मास की तीज का त्यौहार तो एक बहनों का खास दिन हुआ करता था। मोहल्ले की सब बहनें मिलजुल कर इस दिन को खास तौर से एक पर्व के रूप में आज भी मनाया करती हैं। जब बहनें ससुराल जाती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उन्हें कितना भी सुख हो पर वो आंगन याद आता है जब साथ साथ खेला करते थे। पुराने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है और वो गुड़िये वाले दिन कैसे नहीं याद आते हैं कि गुड़िया का एक संसार होता था, गुड़िया गुड्डे का। तो जब एक बेटी विदा होती है तो अपने माँ से क्या कहती है कि मेरी गुड़िया संभाल के रख दो, अब खेलने का समय नहीं रहा। लेकिन मन में ये आस ज़रूर होती है कि माँ गुड़िया संभाल के रखेंगी और जब मैं लौट कर आऊँगी तो इन्हें खेलूँगी। कुछ यही बात ये गाना कहता है, ज़रा सुनिए। फिल्म है तुम लौट आओ। अगर आपको पता है तो किसकी आवाज में ये गाना है जरूर बताइए। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात हो, कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

तुम लौट आओ फिल्म का ये गीत था, सरला भिड़े और शोभा जोशी के स्वर थे। अभी तक हमारे श्रोता नहीं बता पाए किनकी आवाजें थी, हमने आपको बता दिया। चूंकि ये गाना आपको बहुत कम सुनने को मिलता है इसलिए हमने जानकारी दे दी। और एक श्रोता ने

है कि आज से 30 बरस पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए अपने दो बच्चों को छोड़ने गई थी, वो याद आ गया आंख में आंसू के साथ। शायद लेडीज समझ पाएंगी कि बच्चों के जन्म के समय कैसा दर्द होता है। बिल्कुल वही दर्द मैंने उस दिन महसूस किया जब बच्चों को छोड़ा था। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदा दुनिया के सबसे मार्मिक शब्दों में से एक है। एक विदा ऐसी भी होती है कि अब इस जन्म में उससे मिलने की आस खत्म हो जाती है। ऐसी विदा जीवन भर दुख दे जाती है। बेटियों की विदाई में तो सुखम दुखम का क्रम चलता रहता है। विदा कैसी भी हो, जाने वाले कभी पूरी तरह से नहीं जा पाते। वे रह जाते हैं कोई पुरानी तस्वीर में, कोई अधूरी बातों में और उन जगहों में जहां हमने साथ मिलकर एक वक्त गुजारा था। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार में माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है। रूठना मनाना चलता रहता है। बेटी की विदाई एक सुनापन सा एहसास देता है। बेटी के फोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फोन भी है। तो फोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया, और इसके पहले जो गाना सुनवाया था बिछड़ी मेरी सहेलियां तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, ये गाना हमने कम सुना, और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आ रहे थे तो जो मकान मालकिन थी, जिसे वहाँ दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे। मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी, तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए ज़रा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहेली है। पहेली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज़ थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। और इन्होंने बाबुल मोरा नहीं है छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत, आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आँखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं जिससे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है, पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है।

0: है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद आया, तो कहीं ये गाना तो नहीं है? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
0: हीरो हीरोइन का नाम भी आपको पूछना है।

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, फूलों का, तारों का, सबका कहना है।

और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुंच ना पाए। ये कविता की पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाए तो आप अपनी यादें साझा कीजिए। तो श्रोताओं ने लिखा है कि अगर फ़ोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी की बातें हों तो समय असीमित होता है, यूँ समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं। लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आठवीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कई दिनों तक याद आती थी, सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज़्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंडलाइन फ़ोन के लिए आवेदन किया था, बहुत इंतज़ार के बाद हमें फ़ोन मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अनाउंसर बनी थी, इलाहाबाद से रीवा जा रही थी, 3 जुलाई 1987 को सुबह 6 बजे की बस पर बैठी थी और 9:30 पर रीवा पहुंची थी। बस की खिड़की के बाहर मुंह करके बैठी रही, पानी बरसता रहा और घर छोड़कर मैं रोती रही कि कहीं हमारे पापा हमारी रोती हुई शक्ल ना देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब ज़रा रूठने मनाने की बात भी इबारत में हुई थी, तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन है हीरोइन, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बूझिए। फिल्म का नाम सीमा।

सीमा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें, उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। और आपको बता दें, एक श्रोता ने लिखा है, सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहाँ हम मिलकर खेले, झगड़े किए, फिर मिल गए, जब जब मायके जाती हूँ तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं। मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे। ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे। आज कोई भी ना छोड़ने वाले हैं ना रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएँ इतनी बढ़ गई हैं लोगों के घरों में कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफ़र हो रहा है ख़त्म। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती, कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है।

उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है। दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी

अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। That should be the commitment.
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत

0: का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित, पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और

0: डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजा मेहदी अली खां के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। आइए अब सुनते हैं माय लव फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: साज और आवाज़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कुमार बाराबंकी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मुझको

हमराही फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज़ में, गुलशन बाबरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाज़त।

0: और उन्हीं की वजह से देवकी अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से, जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
1: और देवकी अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देवकी अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी। लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
1: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
1: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंक मड़ी, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देवकी अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते, लेकिन अधिक से 3,000 से भी अधिक वृक्ष वहाँ पर हैं।
0: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियाँ और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देवकी अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
1: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
0: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
1: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी थैंकमड़ी कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
1: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी

0: शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
1: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था। और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
0: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए। और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
1: और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है। देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी डोर से तो प्यार की बंद जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बंद जाते हैं, क्योंकि प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहाँ पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है, और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है,
0: बिल्कुल, है ना। और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है, कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे,
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है, और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं, और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने, और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्रकला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को, देखो जो परंपरागत हमारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ते मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: और बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है, और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव-गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है, जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है, सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं, जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं, तो इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा है, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाके जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रख कर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो,
1: हमारे प्यारा सा था ना, रुका ही नहीं गया।
0: देखो, हमारे साथी लिखते हैं, आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं, और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है, और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है, जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीज़ों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं, जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल, और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएँ लुप्त प्राय ही हैं। और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्ण कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुनें।

0: जब जब तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब जब ये चिट्ठियों के संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है, है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था।

0: कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी। डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थीं। स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे। ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
1: क्या बात है, और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आरती। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहां। चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना। उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था। कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
0: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है। मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर थे। उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया, क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
1: और हमारे साथी लिखते हैं आरती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब मैं बड़ा हो गया किसके पत्र लिखने लगा तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था, कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इतर भी डाल दिया करता था।
0: चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हालचाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थीं। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्यौहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाकिये की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर को सुनाते, एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे, क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दें।
0: बिल्कुल। अब एक साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियां होती थी, है ना, वो

0: अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि कितनी जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिलोगी जाके।
1: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना।
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं, तो एक हमारे साथी लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोजपत्र और ताड़पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज, कलम, स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार, भाव, भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पना।

0: आए सुंदर सुहाने सपने सब कुछ साकार होता है और साथ ही साथ अपने प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर उसकी लिखाई से स्पर्श कर व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट और इन सब चीजों में कहां मिलती हैं।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता रहती थी उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
1: चलो एक गीत सुन।

0: तो आरती, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज़ करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहाँ पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें,
0: बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है तो जहां भी आप देखें तो वहां पर आप कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती, तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है। तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी तरुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा, सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने तो देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भाई बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों बताइए श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है सावन का तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा जी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है,
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती है ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज़ फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी दार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज़ पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल, जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामूहिक के साथ, और जो लिसनर है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार है आपके, और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है, और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा, चाहे वो यहाँ का डल लेक हो या यहाँ की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत पानी आया था, तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है, और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा,
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए, ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनके लिए बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके, और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है मैं ना बोलूंगा मैं ना बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटोक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैडम।
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला नाचने वो छाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। सावन महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी।
1: ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, हजारा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर की आवाज में सिंदूर फिल्म।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी बढ़िया होने वाली है, बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात की।
1: हाँ,
0: पानी को
1: लग रहा है। अभी मैं मक्का खेत में कॉल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे खेत की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है, हमारे रेडियो से दोस्त जुड़ रहे हैं, जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी जी।
0: बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: स्वागत है आपका। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पे थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते, ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस।
2: इस श्याने करम का क्या कहना, इस श्याने करम का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने करम का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का, धान, सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा। तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है उसमें लाते हैं गत्ता बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज़ भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो वेबर भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा भोपाल ओझा ग्राम ककवासा जिला गुनासा बोल रहा हूँ मैडम जी। आपसे तो पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे, इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए, आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमाल सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया, गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में, वहीं रहते हैं आप?
1: यहाँ लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं, अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर? कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, विविध भारती सुनते या चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी कथा है जी वाला।
0: अरे, कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए आप 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ जी, मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए, मान लिया हमने। ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी कि जो कांवड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं?
1: मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: मैं ये बॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं, लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निशुल ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी। बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए,
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे।
1: कैसा है, भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर, झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
0: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: उसके बाद जो नारल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा,
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है भीमाशंकर पूना बम्बई कोकण वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
0: समझ गई मैं,
1: इधर बोले तो ये माथे पे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
1: रहता है। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है,
0: हाँ,
1: रीत रिवाज,
0: हाँ,
1: वो चलते आने वाले रीत रिवाज से चलता है, और उसकी मर्जी भी अगर कुछ होता नहीं।
0: क्या बात कही
1: मराठी मध्य एक आभंग है, अरे अरे मानस साधु वेड़ा का खोला रे, देवा पुढ़े मानूस पाला पातोला रे, घड़ी घड़ी नहीं कुनाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिलासा।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घड़ी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से।
1: तुमको बोलूं क्या, सिलोन हाल का रेडू था, उसके पास भी धरती पे आपके जयमाला करके कार्यक्रम आते थे
0: जी।
1: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, हमारा सवा छेकू भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं।
0: बहुत सुंदर,
1: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत, हमें कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साई बाबा का।
0: अरे वाह, कौन सा?
1: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साई बाबा।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिमरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी पीरियड क्या कह रहे हैं आप?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में, लाइव में, ईमेल में और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग, और गीत के बोल है मस्तों का झुंड और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब की हल्का मतलब लाइटिंग बादल किया है, सूर्य की रोशनी है, बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो,
2: फरमाइश।

हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से बोल रहे हैं, 102.8 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उफ, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर। लगा

कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है। पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को, तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का यह है पहला गीत। आवाजी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है दो रास्ते। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने नाखुदा फिल्म का दो गाना सुना, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी, गीतकार थे निदा फाजली और संगीतकार थे खयाम।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सितारा का गीत। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और भूपेंद्र थे। इसे गुलजार साहब ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

आगे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भाग किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था 2 और 2 5। गीतकार थे अनजान और संगीत दिया था राजेश रोशन ने।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर थे आशा भोंसले और अशोक कुमार के। फिल्म का नाम था खूबसूरत। इसे गुलजार साहब ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय कहा से हुजूर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: सुनिए
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 पर हिंदी में समाचारों के बाद। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का अब सुनिए शेष भाग।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था मस्ताना। इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गोपी का गीत। शब्दकार राजेंद्र कृष्ण थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: यह है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ। फिल्म का नाम है दिल। रचना समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी।

0: सुनानी।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म लुटेरा का गीत सुनवा रहे हैं, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म का नाम है बीवी नंबर 1, आवाजें सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष में इनसे मिलिए के अंतर्गत आज सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत होगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज रात्रि 8:00 हवा महल में आप सुनेंगे प्रहसन खुसुर फुसुर, लेखक सोमनाथ नागर, निर्देशक कमल दत्त। चित्रलोक का प्रसारण समय है रात्रि 8:15 और आज रात्रि 9:00 कार्यक्रम होगा आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज रात्रि 10:00 छाया गीत में आलेख और स्वर नेहा आगरकर का होगा, प्रस्तुतकर्ता है राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:30 पर झरोखा और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 273वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल, भाग 7 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं कांचन प्रकाश संगीत। हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत कल सुबह 7:00, कल सुबह 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, इसका भाग 40वां प्रसारित होगा। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर और कल रात्रि 8:15 पर। कल सुबह 9:30 पर और कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम फिल्मकार जे ओम प्रकाश पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगी मनीषा जैन। कल सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। संवादक होंगे मंदाकिनी जोशी और प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। कल दिन में 11:00 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और कल दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। वंदे मातरम एक जय घोष का पुनः प्रसारण कल दोपहर 2:00, 2:30 पर आप सुनते हैं सदाबहार नगमे। हेलो सहेली फरमाइशी फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 3:00, संवादक मंजरी वर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल दोपहर बाद 4:00 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी होगी दिल की गिरह, लेखिका विनीता अस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छाया गीत का पुनः प्रसारण कल संध्या 5:00, 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल संध्या 6:45 पर संध्या रंजन, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर यानी कल 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिएगा अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रकार की बातचीत का भाग 6, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हवा महल में कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे नाटिका हृदय परिवर्तन, मूल कहानी ओ हेनरी की, हिंदी नाट्य रूपांतर रमेश उपाध्याय का, निर्देशक मधुप शर्मा। कल रात्रि 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। कल रात्रि 10 बजे छाया गीत का प्रसारण होगा, आलेख और स्वर पूजा नारानिया का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात आप सुनते हैं 10:30 पर और कल रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। और अब संध्या रंजन।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत कल आप बता रही थी कि राग बिहाग में तीज का जो पद,
1: जी हाँ, ख्याल की बंदिश के रूप में तो इसे सिखाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बंदिश की ठुमरी कह के भी गाते हैं। तो आप देखिए, एक ही पद को ख्याल गायक भी गाते हैं, बंदिश की ठुमरी भी कह के गाया जाता है, और भक्ति पद भी है, यानी एक तरह से इसे भजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिरों में राग सेवा के दौरान गाया जाता है।
0: जी, वर्षा काल में जितनी तीज के साथ हम ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार,
1: जी बिल्कुल,
0: तो और भी त्योहार आते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ना,
1: जरूर जरूर।
0: लेकिन आज आप
1: क्या क्या नहीं किया देखिए श्रृंखला में, हमने शादी करा दी, लग्न लगवा दिया, फिर तीज मना ली, तो सब कुछ करेंगे धीमे धीमे।
0: तो आज आपने क्या सोचा है?
1: मैं सोच रही थी कि तीज त्योहार की बात चल रही है, तो आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं अलग अलग जगहों पे तीज का भी मनाना, थोड़ा सा फर्क इधर उधर होता हो, लेकिन मूल रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक और पद मुझे मिला, वल्लभ संप्रदाय में भी गाया जाता है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी, कुछ गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में के मंदिरों में भी ये गाया जाता है, और ये एक संग्रह में मुझे मिला जिसमें कि मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में इसे दिया गया है। और सिंधारा वो होता है, वो जो उत्सव मनाने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, शगुन के रूप में जो साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान इत्यादि दिया जाता है, वो एक सिंधारा होता है, और सब लोग मिलके झूले पे बैठ के पकवान खा के एक मौज मस्ती का त्योहार ये है। वो मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में मुझे ये मिला, और इसे मैंने तिलंग राग में निबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। ये ख्याल के रूप में नहीं है, ना कि ठुमरी के रूप में है। मेरी चेष्टा ये रही है कि जो साहित्य है उसमें जो एक मस्ती है, एक अल्हड़पन है, और एक निवेदन है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आपको बोल सुनाऊं थोड़े से?
0: बोल भी सुनाइए और तिलंग का रूप भी थोड़ा समझाइए।
1: जरूर जरूर। तो ये खमाज जो थाट है उसका एक राग है ये, और इसमें ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय संगीत के अन्य गीत प्रकार इसमें काफी मिलते हैं
0: जी।
1: तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है।

0: ये तिलंग का स्वरूप माना जाता है और इसी में मैंने ये पद इसको ढालने की कोशिश की
1: तो
0: है।
1: पद भी बताइए बोल।
0: पद कुछ इस प्रकार है, मैया अब हिंडोर गढ़ावो।
1: वाह, सावन के झूले पड़े।
0: हाँ, तो माता से अनुरोध है कि अब आप झूला डलवाइए, हिंडोरा गढ़वाइए। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि बस ऐसे ही कहीं एक टायर लगा के जैसे बंद जाता है, वैसा नहीं। सोनी सुघर बुलाए नगर के, हाँ? यानी जो शहर का प्रतिष्ठित सुनार है, हाँ? उसको बुलाइए आप,
1: हाँ, नगर
0: सोनी,
1: का,
0: हाँ, हाँ, सोनी सुघर बुलाए नगर के रतन अमोल जड़ावो। तो रत्न जटित हिंडोला,
1: हिंडोले में, हाँ, हाँ, हाँ,
0: हाँ। और उसके लिए बाकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि झूले हाँ? पे यूं ही हम ऐसे फटे हाल तो नहीं बैठ जाएंगे। तो गहरे रंग चुनरी सारी छीपन पे जो रंगावो, विशेष रूप से उसे छपवाया जाए, रंगवाया जाए, ऐसी साड़ी आप गहरे रंग की तैयार करवाइए। और केवल मेरे लिए नहीं, कन्या गोप जिति मो साथिन,
1: वाह वाह,
0: सादर सब पहिरावो।
1: क्या बात है, हाँ।
0: तो सब जो कन्याएं हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं, सब उनके लिए गहरे रंग की विशेष छपाई के साथ वो साड़ी आप तैयार करवाइए। ये सावन मन भावन रानी मोको उबटी नहावो। तो उपटन लगा के जो स्नान होता है वो बहुत जरूरी है। उबटी नहावो, सब सखियन में सुंदर लागो रच सिंगार बनावो।
1: वाह, सब सखियों को छपाई की हुई सुंदर साड़ी गहरे रंग की तो चाहिए, लेकिन सब सखियों में इसको सुंदर भी दिखना है सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा तो तब तो ब्यूटी पैजेंट नहीं होता था, पर ऐसा ऐसा इच्छा रहती थी कि सबसे सुंदर हम नजर आए। और फिर क्या पकवान क्या होंगे उसका भी संकेत इसमें मिलता है। पुआ करी, जो पुआ होता है
1: मालपुआ,
0: जी, पुआ करी कीरति मैया गुझा मेवान भरावो। मेवा से, जी, मेवा से भरी गुजिया वो बनेगी। अधिक राचनी, जो ज्यादा रचे, अधिक राचनी मेहंदी सो ले तुम मो करण लगाओ। वैसी वाली नहीं जो कि ऐसी हल्की धुंधली सी आ जाए,
1: हाँ।
0: पर जो अधिक रचे गहरी, वैसी गहरी मेहंदी, हाँ। वो चाहिए मुझे। और फिर झूले का वर्णन है, मानिक चौक पौरी के आगे तहां ले खंब रुपावो। और जो उसके खंबे बने हैं उस पे मरुवे और मयार जु डांडी चित्र विचित्र करावो। तो क्या भव्य एक दृश्य बनता है।
1: जी, मयूर मरावे
0: मरुआ
1: मरुआ,
0: हाँ, और उस फूल लगा के, हाँ, उसे, हाँ, हाँ, सजाया गया है। और ये जो तीज त्योहार अति बड़ो सब मन मोद बढ़ावो। ये तो इसीलिए होते हैं तीज त्योहार कि सब अपना मौज मस्ती करें। उमड़े श्याम सजल घन गर्जन गहरी सुनि सच पावो। उसका सच्चा आनंद जो है तभी होता है जबकि बादल भी उमड़ रहे हैं और बादल की ध्वनि और नगाड़े जो बजते हैं बादल के
1: वर्षा
0: वो भी सुनाई दे। ये वृंदावन दास जी का लिखा हुआ पद है और ऐसे बहुत संत कवि रहे जिन्होंने कितना साहित्य लिखा है उनमें से ये।
1: तो अब देर न करियो
0: चलो सखी
1: जी।

0: राग तिलंग में शुभाजी ने हमें सुनाया है तीज त्योहार का पद। शुभाजी कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। शाम के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना, अभी आप सुन रहे थे ये सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का था। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जावेद अख्तर की बोल, अनु मलिक की धुन, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म का नाम है देवदास। इसे नुसरत बद्र ने लिखा और स्माइल दरबार ने संगीतबद्ध किया है।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। आइए सुनते हैं एम करीम का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम जख्म।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म हेना का गीत, स्वर लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों के। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: सभी श्रोताओं को रेनू बंसल का नमस्कार। इनसे मिले कार्यक्रम में आज जिस कलाकार से हम बातचीत करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक छोटे और बड़े दोनों पर्दों से है। नाम बताने के पहले अगर मैं कहूँ कि कसौटी जिंदगी का रापचिक इंद्रनील या फिर कहूँ कहानी घर घर की का यश, तो आपकी आंखों के सामने वो सलोना चेहरा आ गया होगा। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं सिकंदर खरबंदा। सिकंदर जी, बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
1: शुक्रिया। और ये रापचिक सिकंदर खरबंदा सबको नमस्कार कहता है।
0: सिकंदर जी, आप दिल्ली में जन्मे, दिल्ली में आपकी परवरिश हुई और बम्बई आपकी कर्म भूमि बनी, तो ये जो सलोनी दुनिया है टीवी की कहें या फिल्मों की, इसने कब आपको अपनी तरफ खींचा?
1: जो एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं वो मुझे, जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट है, और फिर मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, पढ़ाई भी कर रहा था साथ में। तो हुआ ये कि अगर आपको एज एन एक्टर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए या ग्रो करना है तो बॉम्बे इज़ द बेस्ट प्लेस, दिल्ली में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वन फाइन डे आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी दिल्ली में, तो उसके बाद डिसीजन ले लिया कि मैं बॉम्बे जाके ट्राई करूँगा, और मैं बॉम्बे आ गया। और यहाँ पे आके रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया। रोशन जी मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई या हेल्प किया, जो भी किया। तो उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया और सफ़र शुरू हो गया एक्टिंग की दुनिया।
0: सफ़र शुरू होने के पहले कितना समय था जो आपको लगा कि वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था या था ही नहीं?
1: नहीं, स्ट्रगल तो बहुत किया। ये नहीं कि बॉम्बे आते ही मुझे काम मिल गया। मैं एक साल तो रोशन जी के साथ ही था। उस दौरान काफ़ी फिल्में मुझे ऑफर हुई लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो यू कैन से फॉर 2 years, 2.5 years आई वॉज इन बॉम्बे विदाउट वर्क। तो फिर कहानी घर घर की में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे रोल ऑफर किया गया यश का। तो वहाँ से बालाजी का सफ़र शुरू हुआ, मेरी एक्टिंग करियर शुरू हुई। उससे पहले दो फिल्मों में छोटा छोटा काम किया। एक स्टाइल एन चंद्रा साहब ने बनाई थी, तो पिक्चर अच्छी चली, उसमें कैमियो किया था। फिर मैंने दिल तुझको दिया, वो दोनों फिल्में एक साथ चल रही थी मेरी। सुहेल खान डायरेक्ट

0: किया उन्होंने, सोहेल खान जी की फर्स्ट फिल्म थी एज अ हीरो। तो वो दोनों फिल्में चली रही थी, जैसे ही उनका आउटडोर ख़त्म हुआ मैं वापस आया तो मुझे बालाजी से कॉल आया और टेलीविज़न में मेरी एंट्री हो गई। तो मैं ये डिनाई नहीं कर पाऊंगा कि टेलीविज़न ने मुझे बहुत कुछ दिया। फिल्मों का क्या होता है कि चलती है तो बोलते हैं कि चलो इसने अच्छा काम किया, एक्टर पब्लिक की नज़रों में आ जाता है। तो मैंने दिल तुझको दिया नहीं चली, स्टाइल में स्टाइल चली लेकिन उसमें रोल बहुत छोटा था। जो मेन ब्रेक मिला मैं कहूँगा वो कहानी घर घर की में था, जिसने मुझे पहले 5 एपिसोड में ही काफ़ी फेम दिला दिया था। तब मेरी आँखें खुली कि यू नो छोटा पर्दा बहुत कमाल की चीज़ है। तो वहाँ से फिर सफ़र शुरू हो गया। एक्टर का जो ड्रीम होता है, कोई भी एक्टर का ड्रीम हो, माई एज स्पेशली, उनका ये ड्रीम होता है कि वो बड़े पर्दे में काम करे।
1: क्या ड्रीम है सिकंदर खरबंदा का?
0: ड्रीम यही है कि अभी फिलहाल मैं बहुत भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ, गब्बर सिंह जो बालाजी टेलीफिल्म्स ने बनाई है, वो शोले से इंस्पायर्ड फिल्म है। उसके अंदर मैंने जय का रोल प्ले किया जो बच्चन साहब ने शोले में किया था। पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है भगवान की दया से, बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो भोजपुरी में अभी 16-17 फिल्में कर ली हैं, उसमें से 8-9 पिक्चरें हिट हो गई हैं। तो अब ड्रीम यही है कि टेलीविज़न कर लिया, भोजपुरी फिल्में कर ली, बड़ा पर्दा अभी चख लिया है मैंने। अब कोशिश यही रहेगी कि हिंदी फिल्मों में कदम रखा जाए। जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड ब्रेक, अच्छा रोल मिले अच्छे डायरेक्टर के साथ तो व्हाई नॉट।
1: तो आपको लग रहा है कि आपका जो होमवर्क है वो छोटे पर्दे से और भोजपुरी फिल्मों से पूरा हो गया है और अब आप पूरी तरह से तैयार हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाने के लिए?
0: नहीं, तैयार तो मैं शुरू से ही था, वो ये है कि अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है अभी तक। जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं आई फील दैट मतलब अच्छा खासा, मतलब कि आई कैन एक्ट एंड आई एम क्वाइट टैलेंटेड दैट वेज। बट ये होती है अपॉर्चुनिटी की बात होती है, ब्रेक की बात होती है,
1: उसमें समय और भाग्य का भी बहुत बड़ा
0: हाथ है जी। समय और भाग्य, और जिसे कहते हैं ना कि वक्त से पहले और
1: किस्मत
0: से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, इट्स अ फैक्ट जो हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं। तो वही है, एक हमारी इंडस्ट्री में किस्मत चाहिए, और बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं टेलीविज़न कर रहा हूँ, लोग मुझे पहचान, एज एन एक्टर इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, और अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: सिकंदर खरबंदा की फिल्मों और टेलीविजन के अलावा क्या जिंदगी है? आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी क्या हॉबीज हैं? और खाली समय अगर मिलता है तो क्या करते हैं?
0: आई एम अ फैमिली मैन, आई एम अ कंप्लीट फैमिली मैन। मैं बॉम्बे आया तो अकेला रह रहा था एज अ पेइंग गेस्ट, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 3 साल उनके बिना रहा हूँ। तो यही सपना था कि फटाफट एक अच्छा सा घर खरीदूँ बॉम्बे में और आई विल कॉल माय फैमिली। तो भगवान ने मेरी मदद करी और मैंने आज उनको बुला लिया। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फैमिली के बिना रहना चाहता हूँ या पेरेंट्स चलो दिल्ली में है, यहाँ पे मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ है तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, ऐसा मेरे साथ नहीं है। बिकॉज माई पेरेंट्स, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं करा, उन्होंने मुझे बचपन से पूरी फ्रीडम दी हुई है। तो आई वॉज मिसिंग देम अ लॉट, तो उनको मैंने भी बुला लिया। कसौटी में अपर्णा का काम उन्होंने किया, अभी करम अपना अपना में भी शी इज़ प्लेइंग अ वेरी नाइस रोल माया के नाम से, तो शी इज़ एन एक्ट्रेस टू। एंड
1: जब अगर आपको समय मिलता है तो सिकंदर खरबंदा क्या करना पसंद करते हैं?
0: मैं भागना पसंद करता हूँ, मैं को जब टाइम मिलता
1: कहां से भागना
0: मतलब कि मैं जिम में भागने की बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: मुझे वर्कआउट करने का बहुत शौक है, समय मिलता है तो चाहे शूटिंग 10 बजे भी पैकअप होता है तो 1 घंटा जो मिलता है 10 से 11 मैं सीधा जिम जाता हूँ, भागता हूँ, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। पार्टी करता था पहले, आई यूज़ टू पार्टी अलॉट, लेकिन अभी इतना बिजी हो गया हूँ, अभी 4 शोज ऑन एयर हैं तो टाइम नहीं मिलता है पार्टी का। तो अभी यही एक एम है कि काम करो, फैमिली जो है उनके साथ थोड़ा समय बिताओ जितना भी टाइम मिलता है, और अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाओ। और अगर थोड़ा फालतू टाइम मिल जाता है तो मैंने थिएटर बनाया हुआ है घर में, आई लव टू वॉच फिल्म, तो या तो फिल्में देखता हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ, जिम में टाइम बिताता हूँ।
1: सिकंदर खरबंदा आज अगर फिल्मी या टीवी कलाकार नहीं होता तो वो क्या होता?
0: एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एक जब एज होती है ना, जब लड़का शीशे के आईने के सामने खड़े होकर बोलता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद या पढ़ाई के बाद ये करूँगा, तो मैंने यही बोला था कि मैं पढ़ाई के बाद एक्टिंग करूँगा और एक्टर बनना चाहूँगा। तो जब वो मैंने सोच लिया, उस राह पे निकल पड़ा, भगवान ने थोड़ा साथ दिया, एक्टर बन गया, तो उसके बाद कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या करूँगा। मे बी लेटर ऑन अगर थोड़ा मतलब कि ज़्यादा सक्सेस मिल गया, इफ़ आई बिकम सक्सेसफुल, अर्न सम मनी, आई विल गेट इनटू प्रोडक्शन, बाकी रहूँगा इसी इंडस्ट्री में।
1: आपने कहा कि आपका जो

0: वो पहला सबक था वो आपको स्टेज से मिला, आपने मॉडलिंग भी की और आपने स्टेज भी किया। आज आप स्टेज पर फिर से लौटने की सोचते हैं या अपने इस काम के साथ साथ स्टेज पर भी काम करने की सोचते
1: नहीं
0: हैं?
1: थी, अगर आप स्टेज की बात करें तो एट प्रेजेंट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट बहुत होती है। वहाँ पे आपको एक प्ले करने से पहले कम से कम नहीं तो 3-4 महीना रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं, तो वो तो अभी टाइम नहीं है। मैं करके कमिट करके तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो अभी जो मैं टेलीविजन शोज़ कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं प्रोड्यूसर्स के साथ जिनके साथ मैंने कमिट करा पहले वो करूँ। ये है कि अगर कल को मुझे 3-4 महीने कुछ फ्री टाइम मिलता है तो व्हाई नॉट, देन मे बी मैं दोबारा स्टेज।
0: मतलब वो ऑप्शन हमेशा खुला है?
1: वो खुला रहेगा। एक्टर एक, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का एक्टर हूँ, मुझे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन थिएटर के लिए बहुत समय चाहिए जो अभी है नहीं।
0: फिल्मों में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है?
1: फिल्म बहुत है, वेरी लॉन्ग लिस्ट। मुझे हमेशा उन्हीं एक्टर्स ने ज़्यादा आकर्षित करा है अपनी ओर, की जो अपने बलबूते पर बने हैं। मिस्टर बच्चन, उनकी भी कोई मेरे ख्याल से कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, तो क्योंकि मेरा भी जो भी है वो जिसे कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, तो मेरा भी वही हिसाब है। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ। उन्होंने अचीव करा है अपने बलबूते पर, अचीव करा है। उनसे ऐसा लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टार सन होंगे या आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसी जान पहचान है तभी आप एक एक्टर बन सकते हैं या स्टार बन सकते हैं। अगर मन में इच्छा हो, मेहनत करो, तो कोई भी बन सकता है। तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही नाम लिए।
0: इस फिल्मी दुनिया में आपके पसंदीदा कलाकार और पसंदीदा डायरेक्टर कौन है?
1: वो डायरेक्टर्स तो बहुत हैं
0: जिनके साथ आपकी तमन्ना है कि जल्दी से जल्दी काम करने का मौका मिले।
1: बहुत है वो तो, मतलब मैंने एक बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स के साथ काम भी किया, एन चंद्रा साहब इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर। छोटा काम किया उनके साथ, छोटा रोल किया। अब्बास मस्तान जी के साथ टार्ज इन द वंडर कार में कैमियो किया था। दे आर ब्रिलियंट। अब्बास मस्तान जी तो मतलब बहुत बड़े हैं। बाकी संजय लीला बंसाली जी हैं, बहुत लंबी अपना हिरानी साहब हैं, बहुत सुभाष घाई साहब हैं, मतलब इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। मतलब दीज आर द टॉप डायरेक्टर्स। वो एक ड्रीम होती है एक एक्टर की कि वो हाथ रख दे हमारे ऊपर अपना, तो हमारी निकल पड़ेगी। तो कभी होगा किस्मत में तो ज़रूर, व्हाई नॉट।
0: फिल्मों में आप हीरो का किरदार करना चाहेंगे या चरित्र रोल निभाना?
1: मैं एक्टिंग करना चाहूँगा, चाहे टीवी हो या फिल्में हो। वो हीरो पब्लिक बना दे अलग चीज़ है, लेकिन कुछ भी दिया जाए मेरे को, मैंने हमेशा प्रूव करा है। कहानी घर घर की में मैं एक ब्रैट का रोल कर रहा था, एक नेगेटिव रोल कर रहा था। उसके बाद कसौटी में एकदम कॉमेडी करा जो और भी बड़ा हिट हो गया। अभी परी उमा में हरियाणवी रोल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका भी। तो मैंने छोटे से अपने करियर, मतलब कि जितने भी शोज़ करे हैं 5 साल में, उसके अंदर मैंने इतने किरदार प्ले कर लिए हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो मुझे एज एन एक्टर थोड़ी खुशी होती है कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू अ विलेन, आई कैन डू गुड कॉमेडी, इमोशनल थिंग्स। तो अच्छा काम मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हीरो ही बनना है। जब कोई रोल मिलेगा उसको मतलब कि जी जान से निभाएंगे।
0: सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, एक बानगी बताइए।
1: मैं एक बड़ा परी हूँ मैं, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसके अंदर हरियाणवी करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम हरियाणवी बोल रहा हूँ, मेरे को आती नहीं है लेकिन प्रयास किया, थोड़ा मेहनत करी तो अच्छा चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है वो करने में।
0: तो उसका एक आध कोई डायलॉग हमें सुना दे।
1: सिचुएशन बताता हूँ कि मैं हीरोइन को छेड़ने जाता हूँ। हीरोइन गरीब सी, निक्की नाम है हीरोइन का, तो मैं उसके स्टिचिंग कर रही है तो मैं उसको जाता हूँ छेड़ने जाता हूँ। और उसका बर्थडे है और सब भूल गए हैं कि उसका बर्थडे है, तो एज अ विलेन मुझे याद है बिकॉज मैं उसको पटाना चाहता हूँ। तो निक्की जी हैं, मारे से कुछ ना छुपा है, ये ससुरे तो थारा बर्थडे भी भूल गए पर मारी मेमोरी में छेदना है, मारी बात मान लो, एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो, थारी सारी समस्या का एक ही हल है, बलमा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं कि संजीदा रोल करने से जो हास्य रोल होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, ये कितना सच है?
1: बहुत, ये तो एकदम सच्चाई है। हालांकि अगर मैं कसौटी का एग्जांपल दूं मैं, तो उसके अंदर जो मैंने कॉमेडी करी है वो मैंने खुद ही क्रिएट करी है। ये जो रापचेक, ये जो मैनरिज्म्स और जो माइंड ब्लोइंग रिस्पांस मुझे बच्चों से स्पेशली मिला है, हर स्कूल, मतलब कि कभी तो एक बारी मुझे पंजाब की किसी टीचर ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन पर डांटा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कसौटी में। मैंने कहा हुआ क्या, तो कहते क्लास में जब भी बच्चों को टाइम मिलता है, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, तो वो रापची करना शुरू कर देते हैं, जो आप अपने बालों पर हाथ फेरते हैं वो वही करते हैं, तो आप ये करना बंद कर दीजिए। तो मुझे पता नहीं था कि यू नो बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट एज एन एक्टर और कॉमेडी सब नहीं कर सकते।
0: आपका रोल देखकर कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि आप जो छोटी छोटी शरारतें करते थे और उस सीरियल में आपने कई बार चोरी भी की, तो इससे ये नहीं लगा आपको उस वक्त कि मुझसे प्रेरित होकर कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं जो गलत काम है?
1: मैं तो कहता हूँ मुझसे प्रेरणा लो, अपने अपने आसपास वालों को हंसाओ, क्योंकि हंसाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है जो मेरे को भगवान ने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से थोड़ी प्रेरणा लो, कसौटी वाली प्रेरणा नहीं, दूसरी वाली प्रेरणा, कि हंसाना शुरू करो अपने आसपास वालों को तो अच्छा लगेगा, चोरी मत करना।
0: सिकंदर खरबंदा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: वेलकम, थैंक्स अ लॉट।
0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में, अभी आप सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत सुन रहे थे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से बोल रहे हैं 102.8 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, एक गीत कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए फिल्म किसना का ये गीत। स्वर उदित नारायण, इस्माइल दरबार, आयशा दरबार, एस शैलजा और अलका याग्निक के हैं। गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीत है इस्माइल दरबार का। लीजिए सुनिए।

एक गीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना फिल्म किसना का ये गीत। हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से बोल रहे हैं 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 8:05 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

पेश है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम आईना। गीतकार समीर हैं, संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन हैं।

0: यह आवाज लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था आईना। गीतकार समीर थे, संगीतकार थे दिलीप सेन और समीर सेन।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
0: और आइए अब सुनते हैं विजु शाह का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें। फिल्म का नाम है गुप्त।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे मातरम।
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।
4: I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और आइए अब सुनते हैं शिल्पा राव की आवाज, फिल्म का नाम नो वन किल्ड जेसिका। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: यह आवाज थी मोहित चौहान की और फिल्म का नाम था न्यूयॉर्क।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मैंने मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और

0: करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
5: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
6: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
5: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
7: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
9: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
10: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आपके लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। ये है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है झील के उस पार। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म झील के उस पार का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है अभिलाषा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाज है जसपाल सिंह की और फिल्म का नाम है श्याम तेरे कितने नाम। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार रविंद्र जैन।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। और आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार ही प्यार का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है खिलौना। शब्द आनंद बख्शी के हैं और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म खिलौना के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल यात्रा

आज के फनकार कार्यक्रम में आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकार।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द के गाने विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात हो

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंटोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हैमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया।

0: विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी। विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।
1: टपके टपके

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाए गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छायागीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुन ले ए महबूब, मेरी दुनिया को तेरे साथ की जरूरत है, मेरी आंखों को तेरी एक नजर का इंतजार, और मेरे दिल को विश्वास है तेरे सहारे का। जब तन्हाइयां मेरा दामन थाम लेंगी तो तेरी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी। जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएंगी तो तेरी मोहब्बत मेरा हौसला बन जाएगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस तेरे दिल में एक छोटी सी जगह मिल जाए, यही मेरा ख्वाब है।

दिल का क्या करूं जो हर पल तुम्हारा ही नाम लेता है। बहुत दिनों से अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी मेरा साथ नहीं देती। पहली बार प्रेम पत्र लिखा है मैंने। अगर मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरे तो इसे नादान दिल की भूल समझकर माफ कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे कि तू बस नाराज ना होना।

जिस राह पर तुम बढ़ोगे उस राह की हर आहट में मुझे ही पाओगे। हमारी जिंदगियां अब दो नहीं रही, एक ही धड़कन की दो सदाएं बन चुकी है। तुम्हारे दिल की हर अनकही बात मेरी नजरें कब की पढ़ चुकी हैं। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। तेरी मोहब्बत ही अब मेरी दास्तां बन गई है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। आज न जाने क्यों ये खामोश रात भी मुझसे कुछ कह रही है, हवा की हर सरगोशी में जैसे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है, दिल की धड़कने भी कोई अनजान सा नगमा गुनगुना रही है जिसे सिर्फ मेरा दिल ही समझ पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत ने बिना दस्तक दिए मेरे दिल में अपना आशियाना बना लिया हो। अब हर खामोशी में एक मीठी सी आहट है, हर तन्हाई में तुम्हारा एहसास। शायद इसी अनकहे एहसास का नाम मोहब्बत है।

0: आज न जाने क्यों ये होठ यूं ही गुनगुनाए जा रहे हैं। दिल में जो राज बरसों छिपा कर रखा था, लगता है अब आंखें उसे ही बयां कर देंगी। डर ये है कि कहीं मेरी मुस्कान सबको मेरी मोहब्बत का पता ना बता दे। अजीब सी बात है, इस एहसास में मिठास भी है और एक मीठी सी चुभन भी। लगता है इस दिल ने प्यार का ऐसा जाम पिया है जिसमें शहद भी घुला है और जहर भी। अब खुदा ही जाने ये राज मेरे दिल में रहेगा या मेरी धड़कनों की जुबां बनकर सबके सामने आ जाएगा।
1: होठों में ऐसी बात।

जब भी बदरा घेर आते हैं, दिल में एक गड़गड़ाहट सी होती है। बिजली की हर चमक मेरे दिल को और बेचैन कर जाती है। ऐसे मौसम में दिल कहता है, काश साजन की बाहों का सहारा मिल जाए। फिर ना बरसात की बूंदों का डर, ना गरजते बादलों का, उसे एक पल में सारी दुनिया से मट जाए। बस धड़कनों की सरगम हो, बारिश की रुंझुन हो और साजन का साथ। शायद मोहब्बत का सबसे हसीन मौसम वही होता है जब बरसात बाहर भी बरस रही हो और दिल के अंदर भी।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश।
1: वंदे मातरम।
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।